0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। तेल पैदा करने वाले ममालिक के ओपेक प्लस ग्रुप के साथ अरकान ने ऐलान किया है कि वो जून में योमिया पैदावार के कोटे में 1,80,000 बैरल से ज़्यादा इजाफा करेंगे। ये फैसला ग्रुप से मुत्तहिदा अरब अमारात के निकलने के बाद किया गया है। सऊदी अरब और रूस समेत ममालिक ने इतवार को एक ऑनलाइन इजलास के बाद ये बयान जारी किया। उनका कहना है कि वो पैदावारी कोटे में 1,88,000 बैरल योमिया इजाफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस को भी जुमे के रोज छोड़ देगा। उसने इतवार के इजलास में शिरकत नहीं की। ग्रुप ने मई के लिए योमिया 2,06,000 बैरल का इजाफा मुकरर किया है। सातों मुल्कों ने कहा कि वो मंडी की सूरत हाल की करीबी निगरानी और जायजा जारी रखेंगे। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सु ने अपने ईरानी हम मनसब से इस मुतालबे का इरादा किया है कि खलीज फारिस में मौजूद बैरी जहाज जल्द अज जल्द बाहिफाजत आबनाए हुरमस से गुजर सके। मशरकी अफ्रीकी मुल्क कीनिया के दौरे के दौरान जनाब मोतेगी ने जापान के मयारी वक्त के मुताबिक इतवार को अलसुबह ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची से टेलीफोन पर बात की। ईरान की दरख्वास्त पर होने वाले ये मुजाकरात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहे। जनाब इराकची ने मोतेगी को अपने मुल्क के अमरीका के साथ तनाज़े के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के बारे में वजाहत दी, जिसमें वाशिंगटन के साथ तजावीज़ के हालिया तबादले भी शामिल हैं। जनाब मोतेगी ने इसके बाद जापान की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया कि जंग बंदी बरकरार रहेगी और ये कि अमरीका के साथ ईरान के मुजाकरात जल्द बहाल होंगे जो हतमी मुहिदे की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने ईरान से ज़्यादा लचक दिखाने का भी मुतालबा किया। मोतेगी ने मज़ीद कहा कि जापान इस बात को यकीनी बनाने को अहमियत देता है कि तमाम ममालिक के जहाज आबनाए हुरमस से आज़ादाना और महफूज तरीके से गुजर सकें। रवायती जापानी बुल फाइटिंग में बैलों को सींग लड़ाते हुए देखने के लिए तमाशाई इतवार को नीगाता प्रीफेक्चर के एक शहर में जमा हुए। इस इवेंट को एक अहम गैर मरई लोक सकाफती वर्सा नामजद किया गया है। वस्ती जापान में ओजिया और नागाओका शहरों में हर साल इसके सीजन के दौरान कई मैच होते हैं। ओजिया शहर ने इतवार को इस साल का पहला इवेंट मुनक्किद किया जिसमें 36 बैल शामिल थे। मुकाबले में दो बैल आमने सामने होते हैं, वो मालकान की हौसला अफजाई के साथ सींग फंसाकर एक दूसरे को धकेलते हैं। बैलों को चोट लगने से बचाने के लिए हर मुकाबला बराबर खत्म किया गया। तकरीबन 1,000 तमाशबीन इवेंट देखने आए। 80 के पेटे के एक शख्स ने कहा कि उसने पहली बार देखा है और वो वाकई लड़ाई के ताकतवर असरात को महसूस कर सकता है। शहर नवंबर तक हर माह एक टूर्नामेंट का इनेकाद करेगा।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां। जापान और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया है जिसमें इक्तसादी सलामती में ताउन का खाका पेश किया गया है। रहनुमा खतूत तवानाई, अहम मादनियात, खुराक और दीगर कलीदी वसाइल के लिए फ्राहमी का तसलसल यकीनी बनाने पर मरकूज हैं। जापानी वज़ीर आज़म ताकाइची सानाई ने पीर को अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब एंथोनी अल्बानीस के साथ बातचीत की। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के दारुलहुकूमत कैनबरा में हुई और तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमस से बहरी जहाज निकालने की तजवीज़ पेश की है जिसे वो इंसान दोस्त अमल कह रहे हैं। और ओपेक प्लस के साथ अरकान ने ग्रुप से मुतहदा अरब अमारात की अलहदगी के बाद पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 4 मई सोमवार रात 11:30 बजे वरुण तोमर और गुरजिंदर सग्गू से सुने समाचार। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में वार्ता की, जो लगभग 90 मिनट तक चली। वार्ता की शुरुआत में ताकाइची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल लगातार जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर बल देती आई हैं। उन्होंने ऐसे सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक अग्रणी देश बताया। ताकाइची ने आशा व्यक्त की कि जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत की ताज़ा नीति के तहत क्षेत्रीय स्थिरता में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए पुष्टि की कि दोनों देश जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के उन्नत मोगामी श्रेणी पोत पर आधारित नए ऑस्ट्रेलियाई युद्ध पोतों के संयुक्त विकास को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों को सुरक्षित निकालने की योजना पेश की है, जिसे उन्होंने मानवीय प्रक्रिया का नाम दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उसके नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने रविवार को लिखा कि पश्चिम एशिया समयानुसार सोमवार सुबह से होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने इस प्रक्रिया को प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के जहाजों की मदद करना है जिनका पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यदि इस मानवीय प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया गया तो दुर्भाग्यवश उस हस्तक्षेप से निपटने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि होर्मुज में किसी भी प्रकार का अमरीकी हस्तक्षेप संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। इससे पहले ईरान की सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया था कि ईरान ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया है। तस्नीम ने रविवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई के हवाले से बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थ देश पाकिस्तान के माध्यम से जवाब भेजा है और अब उसकी समीक्षा की जा रही है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों ने घोषणा की है कि वे जून में दैनिक उत्पादन कोटा में 1,80,000 बैरल से अधिक की वृद्धि करेंगे। ये निर्णय ओपेक प्लस से संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद लिया गया है। सऊदी अरब और रूस समेत कई देशों ने रविवार को एक ऑनलाइन बैठक के बाद ये वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि वे उत्पादन कोटा को 1,88,000 बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे। यूएई ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग हो जाएगा। उसने रविवार की बैठक में भाग नहीं लिया। समूह ने मई माह के लिए प्रतिदिन 2,06,000 बैरल की वृद्धि निर्धारित की हुई है। सातों देशों ने कहा कि वे बाजार की स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए उसका आकलन करते रहेंगे। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने अपने ईरानी समकक्ष से एक बार फिर अपील की है कि फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से जल्द सुरक्षित निकलने की अनुमति दी जाए। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की यात्रा के दौरान मोतेगी ने जापान समयानुसार रविवार तड़के ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फ़ोन पर बातचीत की। ये वार्ता ईरान के अनुरोध पर हुई और लगभग 20 मिनट तक चली। अरागची ने मोतेगी को ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें वॉशिंगटन के साथ हाल ही में हुई बातचीत का विवरण भी शामिल था। इसके बाद मोतेगी ने कहा कि जापान को पूरी उम्मीद है कि संघर्ष विराम कायम रहेगा और ईरान तथा अमेरिका की बातचीत जल्द ही बहाल होगी और एक अंतिम समझौते पर पहुंचेगी। उन्होंने ईरान से अधिकतम लचीलापन दिखाने का भी आह्वान किया। मोतेगी ने आगे कहा कि जापान इस बात को महत्व देता है कि सभी देशों के जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से गुजर सकें। नीगाता प्रिफेक्चर के एक शहर में रविवार को पारंपरिक जापानी बुलफाइटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे एक महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक संपदा का दर्जा प्राप्त है। मध्यवर्ती जापान के ओजिया और नागाओका शहरों में हर साल इस मौसम में सांडों के मुकाबले करवाए जाते हैं। ओजिया में इस वर्ष का पहला कार्यक्रम रविवार को हुआ, जिसमें 36 सांड शामिल हुए। इन मुकाबलों में दो सांड आमने सामने आते हैं और सर के बल एक दूसरे को धकेलते हैं, जबकि ग्वाले पूरे दमखम से उनका हौसला बढ़ाते हैं। पशुओं को चोट लगने से बचाने के लिए हर मुकाबला बराबरी पर समाप्त कर दिया गया। लगभग 1,000 लोग ये कार्यक्रम देखने आए। 80 के उम्र के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने पहली बार ये मुकाबला देखा और टक्कर के आघातों को महसूस किया। ये शहर नवंबर तक हर महीने ये प्रतियोगिता आयोजित करेगा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में वार्ता की, जो लगभग 90 मिनट तक चली। वार्ता की शुरुआत में ताकाइची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल लगातार जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर बल देती आई हैं। उन्होंने ऐसे सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक अग्रणी देश बताया। ताकाइची ने आशा व्यक्त की कि जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत की ताज़ा नीति के तहत क्षेत्रीय स्थिरता में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए पुष्टि की कि दोनों देश जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के उन्नत मोगामी श्रेणी पोत पर आधारित नए ऑस्ट्रेलियाई युद्ध पोतों के संयुक्त विकास को आगे बढ़ाएंगे।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।